मसकत काल नानक ते मुख उजले केति छुटे लाल वाहे वाहे का खालसा वाहे।

सुने ते ओले वाइड गावे ते ओए दावे सुने ते ओले वाइड बिन से बापे घनेरे बिन से बापे घनेरे।

बल्ले हरे सचिया सैदा सैदा बल्ले हरे तो दिया गे अरे दास गए मारी वाली तो दिया गे

मैं तेरा सचिया बादशाह जियो में सब तेरा कहना सब तेरी वाड़ी आई वाड़ी कहना सब तेरी वाड़ी आई कोई ना वो ना जा ने मेरा ना वो ना जाने मेरा सचिया बादशाह कोई ना वो ना जाने मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

लिखा छोड़ अलिखा छूट हम निर्गुण लेह उबारी सद बखसिंद सदा मेहरबाना सबना दे आधारी।

नाचत फिरत मोर बांदर करत गोर दामनी अनेक भाव करियो करत है। चंद्रमा शीतल न सुर सित पत तेज इंद्र सुन राज भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से नेद चरि सनत कुमार से तपस्या नानत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत।

देहु राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मन सब एक पय अनेक को फरमाओ है। देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के वेश को प्रभाव है।

आग उठे न्यारे न्यारे हुए के फिर आग में मिलाएंगे, जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे, तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भज, केते अच वच हो सपच उड़ जाएंगे, केते नब बीज अच पच को करेंगे भज, केते कुप्रताच

ज्यों अतेज में अतेज जैसे तेज लीन ताहि त्यों बज सब ताहि मैं समाहिंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग बासी कित मदीना मकानी वासी कित उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुअ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोदहारे देवता

परमंग न जन्मंग न जातंग अद्वैखंग अभेखंग योनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेयंग परापरम प्रज्ञा प्रकाशी यछेदंग छयाद अद्वैया विनाशी न जातंग न पातंग न रूपंग न रंगे नमो आद।

बादन सत्र नमिद्रस भूते भविके भवान यचित्रे नारायण नरंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभंग भूतंग अपेक्षं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जो नियचयाद अद्वयाजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं अपनिर्भखादं अछेदंग अभेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न गायंग न नेहं न गेहं न वर्मं न भायं न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न भर्मं सदेवं सदा

देह दुखं कहूँ औषधि रोग के सुख सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जाच गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी साधकी तामसी हूँ कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हूँ कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूम की भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हूँ कहूँ जच विद्या धरे मानवी हूँ कहूँ राजसी हूँ कहूँ राज कन्या कहूँ श्रेष्ठ की पृष्ठ की ऋष पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी।

नहीं राग रेख, जय जन्म जात नहीं भरम भेख, जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात, जय नाम साप नहीं बर्क ब्याद, जय रोग शोक नहीं सत्र साथ, जय त्रास वास नहीं देह नास, जय आद अंत नहीं रूप रास, जय रोग शोक नहीं जोग जुगत, जय त्रास आस नहीं भूम भुगत, जय काल व्याल कट्यो नांग, अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग, जय नेत नेत उचरंत वेद, जय अलग

तीरत बरमत सोवनम कई यगन होत्र कई देव करम कई कर्तवीर विद्या विचार नहीं तदवतास पायत न पार। कहूँ राज रीत कहूँ जोग धरम कई सिमृत शास्त्र दुचरत सो करम न्यौली याद करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान। कहूँ कर्त ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ कर्त जाच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान। कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ कर्त शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार। कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जल निवास कई अगनताप कई जपत उर्द लटकंत जाप। कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदवतास पायत न अंत कई कर्त कूट विद्या विचार नहीं तदवदेश देखे मुरार। बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु कर्त हो मर जग।

दीन जमीन जमा जे रचयंग सर्व मकीन मका जे राग न रूप न रेख रुखंग जे ताप न साप न शोक सुखंग जे रोग न शोक न भोग भुयंग जे खेद न भेद न छेद छयंग जे जात न पात न मात पितंग जे रचयंग छत्री छत्र सितंग जे राग न रेख न रोग भणंग जे द्वैख न दाग न दुख गणंग जेहे अंड ते ब्रह्मंड रचियो तत चार करी नवखंड सचियो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नगंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड सेतज उद भुजंग किये देव देव सराद पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न जूत जुतंग जे तात न मात न ब्रात सुतंग जे रोग न सोग न भोग भुअंग जे जंप किन्नर जछ जुअंग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर।

गाद प्याद अनाद कतंगन खेद भेद अछेद नरंग जे चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुकंग जे सोग न भोग न जोग जुगंग भू भंजन गंजन आदि रंग जे बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सचे अन भंज प्रभान गंज वृतंग जे पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप अडंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जपै सुत सिंध दो मुख ताप तपै कई कल्पन लो तब ताप करे नहीं नैक कृपा।

एक नाम बिना नहीं कोट प्रतीम वेद उचारत सारसती जो वारस के जस के रस है देव भूल न काल बंधा फस है।

भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास दीव सर्व सात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिए सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानिए नराग रंग रूप है न रोग राग रेग है अधोगता गतक है अभूत ब्रह्म भेक है न तात मात जात है न पात चिहन वर्ण है अदेक शेख भेक है सदीव विश्ववरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेख विश्ववरण है जिमी जमान के विके सदीव करम भरम है अद्वेक है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्वठोर में विशेख अन मानिए न जंत्र में न तंत्र

है, न घाट है, न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होता है, न हान है, न बान है, समान रूप जानिए, मकीन ओ मकान अप्रमाण तेज मानिए।

है न रोग है न शोक है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न सात है प्रिया है पवित्र है पुनीत है ब्रमात है न सीत है न सोच है न ग्राम है न घाम है न लोभ है न क्रोध मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र के विभूत है न काम है न क्रोध।

है अनंत तेज जानी है, अभूम अभिज है सदा छिज तेज मानी है। न आद है न व्याद है अगाध रूप लेखी है, दोख है अदाग है अच्छे प्रताप वेखी है। न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है। न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है।

गजादपि नरादपि करंत सेवा सदा सितस्पति तपस्पति वनस्पति जपस्ता अगस्त आद जे बड़े तपस्तपि विषेखिये बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिये अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात बात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानिए सदैव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में।

रूप राग ना रेख रंग ना जन्म मरण विहीन आदनाद अगाद पुरख सो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्र न तंत्र जाको आद पुरख अपार हस्त कीट बिखे बसे सब ठोर में निर्धार जात पात ना तात जाको मंत्र मात ना मित्र सर्व ठोर बिखे रम्यो जे चक्र चहन ना चित्र आद देव उदार मूर्त अगाद नाद अनंत आद अंत न जानिए अभिखाद देव दुरंत देव भेव न जान ही जे मरम वेद कतेब सनक औसन के संदन पाव ही न हसेब जाछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्गा पार नेत नेत पुकार हे शिव सकरो मुख चार सर्व सपद पतार के तर जाप ही जह जाप आद देव अगाद तेज अनाद मुरत अताप जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहे ओ विराज धीराज राज प्रवीन जाछ गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय न माहे वैष्णंके बिखे विराजे सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म से एक स्वरूप रात दिवस न मत उर्त न भूमा का सनूप

सोत सोत हटे सभा सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पड़त पड़त थके महागव गढ़त गाढ़ अनंत हार हार कहो सबो मिल नाम नाम दुरंत वेद भेद न पायो लखेव न सेवक तेब देव दानो मूड मानो जस न जानै जेब भूत भव भवान।

हर नंग बोष्ट कर नंग सर्व के प्रतपाल सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुगता सर्व

थके सभय कर कूट कष्ट दुरंत। गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार, सोध सोध थके महासुर पायु नहि पार। त्व प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचर्यो मस्यो बैन, स प्रताप जगदीश को कहो सकल विद तैन दोहरा। को आत्मा स्वरूप है क

कहाँ रंग राजा गवन हरक शोक है कवन गोरु की रागी गवन कहो तत्म है तवन दोहरा कवन रिष्ट को पुष्ट है।

सीमा का दुर्मर्दन रम कबरदन दैत जिनंग चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगण ध्वजा परंगण फणी फुंकार जोड़ जिते सरधार विपर खंड दुष्ट प्रकार खंड पुष्ट प्रहर खंड दुष्ट मथे जय जय हो सीमा का दुर्मर्दन भूमा का सल उर्दे दामनी प्रहासन सुषम निवासन सृष्ट प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर।

अघोग निवारण दुष्ट निवारण दुष्ट प्रजारण श्रेष्ठ उपारण शुद्ध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते सहती सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय उसी महासुर मर्दन भूमाकाश पताल जलंग चाचर चमकारण चिच्छुर हारण धूम्ब धुंकारण द्रप मथे दाढ़ विवृतंते जोग जयंते मृज मथंते गूढ़ कथे करण प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य

केसरी प्रवाहे सुत सन्ना हे अगम था हे एक वृते जय जय हो सी मखा सुर मर्दन आदु कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट बिना।

संकट निवारण नदम उदारण तेज प्रकार कण धुंध तबे दुख दोगद हंती ज्वाल जयंती याद अनाथ अगाद अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय होशी सत्र प्रकार कण आद नील अगाद अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नर्क निवारे अदम उदारे तोर भुजे दामनी दमंके के हरलंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय होशी रक्ता सुरखंडन सुंभ चक्रधन सुंभ मथे बारज बिलोजन ब्रतन विमोचन सोच बिसोजन कौज कसे दामनी ब्रहा से सुख सरना से सुभ्र सुभा से दुष्ट ग्रसे चंचला ब्रंगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय होशी मैं खा दुर्मर्दन आद नाद का दुर्धंग घंट का बिराजे रुणझुन बाजे ब्रह्म बाजे सुनत सुरंग को किल सुन लाजे किल बिक भाजे सुकूप राजे मत उरंग दुर्जन दल दज्जे मंथन रिज्जे सब न भज्जे रूरण जय जय होशी मैं खा दुर्मर्दन चंड चक्रदन आद कुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोष रोदन क्रूर प्रत्ये धूमराज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विदुंसन शुद्ध मते जाल पा जयंती शत्रु मथंती दुष्ट

दामनी प्रकाशे अंतरनासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकार खंड सर्वर वर खंड दुष्ट प्रतर खंड पितल तले अष्टायत बाहन बोल निबाहन संत बनाहन गुड़ गते जय जय होसी मैं खासुर मर्दन आद अनाद अगाध प्रते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत।

सुर मर्दन धूम्र विदुंसन आदि कथे रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दंदान वर्दन बिडाल बदे सरदार विपरखन दुर्जन धरखन अतुल अमरखन धरम धुजे धूमराज विदुंसन

कई मूढ़ पत्र पूजा करंत कई सिद्ध सात सूरत सिवंत कई भलट सूरत सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वै कै लखाए अंशिज तेज अन वह प्रकाश दाता तुरंत अद्वै ना सब रोग सोख तय रहत रूप अन वह अकाल अच्छा स्वरूप करुणा निदान कामल कृपाल दुख दुख।

और दंग बिरहत से दंग स्वरूप बुद्धंग पाल जो दंग अनूप जय रूप रेग नहीं रंग राग अंशिज तेज जदाग जल धर्म ही बंधन दुरंत जय नेत नेत निषि दिन उचरंत पायो।

की प्रतपाल करें नित संत उवार गनी मन गारे पच पशु नग नाग नरा देव सर्व समय सब को प्रतपार है फूकत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं गरम बिचारे दीन दयाल दया नित दुखन देखत है पर देत न आ रहे दाहत है दुख दुखन कौदल दुजन के पल मै दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार है पार न पाए सके पदमा पद भेद गते वेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राज करो खुरान की रोज नटार है कीट पतंग कुजंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अहंग वेव न भेव लख्यो ब्रह्म शिव भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यों किंसरे।

दीन दयाल दयाकर श्रीपद सुंदर श्रीपद महापद ये है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह विहीन स्नेह संबोधन नेह विरक्त अगेह अच्छ है। जान को दे दे जमीन को दे दे जमान को दे।

गूंज थके सब ही खुजिय असुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रम नारग से सबहु मिल गायो। वेद कतेव न भेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनातन सनंदन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद निर्पान सब बजहारे। भेद न पाय सके वन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न सो

अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धार्य के चलैया महासत्रण के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जतैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमालय द्यावे गौर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोग जोग साध पौन साधना की देख बांधे अरब के अरब आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे से जाने पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है। मन टम गेल तेरी मन सो तपस्या कर दृढ़ वै तिलंग पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली

और गाऊ पे न दीन साध दीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथ की पुकार पल पछ पहु जतता है चिट्ठी की चिंगार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्ण अवतार किते राम कहियत है। किते ससुरासी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार कहियत है। किते महादीन किते व्यास से प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जच कहियत है। करते हैं।

द्वया पे नासी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूं के राशि है या नासी के मानी है जंत रहु न जात जा के बाप हूं न मायता की पूर्ण न प्रभा की सुछटा के अनुमानी है तेज हूं को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के वो होनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानी है तेज हूं को तार है के राजसी को सार है के शुद्धता को खर है के सिद्धता की सार है कामना की खान है के साधना किसान है विरक्तता के बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूं को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के

राजन के राजा महा साज होंगे साजा महा जोग होंगे जोग है धरय द्रुम छाल के कामना के कार है के बुद्धता को हार है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छाज कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप काल इंद्र के कूल के हंसनी से सिंह रोम ही रसि हुसन बाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पल्लव गढ़ रूपा कैसे रामपुर सूरा से सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपा से चंदेरी गोड चांदनी से चंदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती से फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसी पुर सी ससी सुरंगाबाद निके सोहियत है हिमा से हिमालय हर हार सी हलब्बा ने हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन से चंपावती चंद्रमा से चंद्र गिर चांदनी से चंदगढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धार बकान से बिलंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी सिके दुरंगी मकरान के मृतंगी तेरे गीत गायत है फकरी कंधारी गोर गखरी कर दे जारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप अगमाऊ सर्वठौर में विराज जहाँ जहाँ जाइयत है पूर्ण प्रताप चंद्र मंत्र दे अता बिना।

रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहण न जाई तेरी तलवडियाई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धां पुरखां कियां वडियाईया। तुद विण सिद्धि कनै न पाईया, करम मिलै नाही ठाकर हाईया। आखण वाला क्या विचार, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू दहे तसै क्या चारा, नानक सच सवार।

दुष्ट दोख ते लेहो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता, किलबिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता, श्री अलदुजा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांशत फल पावे, सोई दुख नाथ सह ब्याप।

को कह चौपई सम सतरै सैस भणी जय अर्ध सैस भुन तीन कहे जय भादौ सुधि अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा।

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत स्वर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल हुई आद ब्याज छुए सकै न कोई सम

जात है हो मैं कर्मकमाए हो मैं ए पंद्रह फिर जो निपा हो मैं किथों पजा के संजम है जाए हो मैं एहो हुक्म है पया के खराए हो मैं दीर्घ रूप है दारू पी समाहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे नानक कहे सुनो जनो इत संजम

दर्द सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तर करे हच्छा धोए सच ता पर जानी है जा सच रे प्यार नाम समर ऐसी ता पाए मुख द्वार सच ता पर जानी है जा जुगत जाने जियो तरत काया साध कै विच दे करता बियो सच ता पर जानी है जा